सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जिया बिंदा.

रास्ते होंगे लब, एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win. Ready.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM. ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
5: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Namaskar, I am R. Madhavan.
3: Hi, this is Vibhasha Basu.
4: Hi, I am Rajkumar Rao.
5: Hi, I am Priyanka.
6: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: तुमसे कह देंगे हम सारी बातें कैसे।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज एयर अमान। लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jiya
1: Bindas. Awesome. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: Song of the hour. Song. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?

0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: गानों के साथ यह हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

देखो यार, दिल की धड़कन का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन अपने पलंग पे, अपने बिस्तर पे एसी 16 में चला के जरूर मैं रहती हूँ। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, जैसे हर वीकेंड के बाद मेरे साथ होता ही है कि मैं जो है बस मेरी बॉडी उठ के जो है ऑफिस आ जाती है। अभी मेरी सोल जो है वो अभी ब्लैंकेट में सो रही है, उसे एटलीस्ट 4-5 घंटे लगेंगे ये प्रोसेस करने में कि छुट्टी का दिन खत्म हो चुका है और ऑफिस जाने का वक्त आ गया है, और अब एक हफ्ते जो है जुझारू रूप से जो है मेहनत करनी पड़ेगी ताकि फिर से एक वीकेंड मिल पाए। आई नो ये टफ है आपके लिए, मेरे लिए बहुत टफ है, लेकिन क्या करें, जीवन है, जीना तो पड़ेगा। तो क्यों ना इस जीवन को थोड़ा फन करके जो है जिया जाए, लाइफ को थोड़ा मस्त बना के जिया जाए, और बस आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए मैं आ चुकी हूँ अपना ये शो लेकर। आज बहुत सारी फन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम मौसम का क्या हाल चाल है उस पर बात करेंगे, उसके बाद फिर कौन सी बॉलीवुड मूवी जो है वो रिलीज हुई उस पर बात करूंगी, कुछ मूवी रिकमेंडेशंस भी आपको दूंगी इनकेस अगर आज आपकी छुट्टी है या आप वो इंसान है जो देर तक जो है कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो फिर एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम कीजिए, बढ़िया है, मजा आएगा। एंड इसके साथ साथ फैशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले धीमे धीमे स्लोली स्लोली धीमे धीमे 2.0 गाना जो है आपके रेडियो सेट्स की तरफ बढ़ रहा है, सो ये गाना इंजॉय कीजिए। बाकी 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं कि आपका वीकेंड आखिर कैसा गया। सो फिलहाल पति पत्नी और वो दो मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर ये गाना टोनी जी की आवाज में। एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जीओ बिंदास।

0: अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: हर लड़की के दिल में जो है यही गाना बजता है जब वो बाल धोकर जो है, बाल हल्के हल्के से सुखा कर जो है वीकेंड वाले दिन सेल्फ केयर में खुद को इंडल्ज कर देती है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं मनोज यादव जी का जो है लिरिक्स जो है इस गाने में है एंड क्या खूबसूरती से एक लड़की को डिफाइन किया गया है, मतलब मजा ही आ गया। वैसे मजा तो देखो मौसम से नहीं आ पा रहा है क्योंकि इस वक्त का टेम्परेचर जो है वो दोहा में 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और आज का हाइएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 42 डिग्री सेल्सियस तक और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 31 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यार इस हीट को बीट करने के लिए देखो थोड़ी सी कूलनेस की जरूरत है, इसीलिए आपके लिए लेकर आ गई हूं मैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर। अब देखिए ये गाना एंजॉय करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मेरा वीकेंड कैसा था, मैंने क्या कुछ किया एंड आज जो है आप क्या कर सकते हो, मतलब कौन सी मूवी जो है वो देख सकते हो। तो फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है, इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

यार देखो, मैं तो कब से कह रही हूँ, बस आप ही लोग हो जो सुन नहीं रहे हो कि आप बॉलीवुड एक तरफ और राघव भाई जो है वो दूसरी तरफ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड राघव, जिसे हमने बचपन में, मतलब मैंने तो जब मैं नौ दस साल की थी तब देखा था, जब वो एक डांस रियलिटी शो में आए थे एंड उनका वो आइकॉनिक स्लो मोशन स्टाइल जो है वो फेमस हो गया था। एंड उसके बाद हमने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इतना ज़्यादा प्यार दिया उन्हें, एंड किल मूवी में इतना ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन अब एक कॉमेडी मूवी के साथ वो वापस आ रहे हैं। यस, सो भाई तेरा स्टार है मूवी जो है स्टारिंग राघव, जल्द ही रिलीज होने वाली है एंड उसका ट्रेलर जो है वो आउट हो गया है एंड इतना अमेजिंग, इतना फन ट्रेलर है। ट्रेलर से पता चल रहा है कि जो स्टोरी है ये एक रात की स्टोरी है कि एक रात में वो किस तरीके से जो मेन कैरेक्टर है वो पैसे जो है उसका जुगाड़ लगाएगा, लेकिन एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो है उसके स्वैग के साथ राघव ने माय गॉड क्या इम्प्रेस किया है ट्रेलर में ही, तो सोचो मूवी कितनी अमेजिंग होगी। अब देखिए, इंतज़ार तो है कि मूवी जो है जल्दी से रिलीज़ हो जाए, हम देख लें, लेकिन क्या इतने कॉम्पिटिशन में जहां हर वीक एक अमेजिंग मूवी जो है वो लाइंड अप है, क्या ये मूवी काम कर पाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि जो है एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसकी स्टार कास्ट बहुत अमेजिंग थी, सो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग गाना, ये तो बनता है, खबर नहीं मूवी से खबर नहीं गाना दोस्ताना मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए। बाकी अमेजिंग वाले और भी गाने जो है वो लाइंड अप है विशाल दुदलानी की आवाज में, ट्रैक एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अब देखिए अलग अलग टाइप के लोग वीकेंड पे अलग अलग टाइप के काम करते हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग सिर्फ जो है लेट उठते हैं और फिर पूरा दिन कंटेंट देखने में निकाल देते हैं। अब वो कंटेंट रील में भी हो सकता है, वो टीवी पे भी हो सकता है, वो ओटीटी पे भी हो सकता है, वो यूट्यूब पे भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसर शो जो है आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं। लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, लाइफ मस्त है ये तो मैं कहती ही रहती हूँ, लेकिन लाइफ मस्त सच में वीकेंड पे हो जाती है, क्योंकि कल पूरा दिन मैं जो है लेट उठी, उसके बाद फिर मैंने जो है रील्स देखी, उसके बाद फिर मैंने एक सीरीज लगाई जिसमें आई थिंक जिसमें 6-7 एपिसोड से, एंड वो मैंने पूरे एक दिन में देख लिए। मतलब मैंने जो है 2 बजे देखनी शुरू की थी और आराम से 6:30-7 बज गए थे मुझे वो सीरीज कंप्लीट करते हुए। बिंज वॉच किया है मैंने, लेकिन इतनी अमेजिंग, इतनी मोटिवेशनल वो जो सीरीज थी कि मेरे को इतना मजा आया यार। मूवी का नाम यानी सीरीज का नाम है हेलो बच्चों, जो अलख सर की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जहां पर वो IIT नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। अपने यूट्यूब पर उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद फिर एक ऐप बनाया। आप लोगों में से भी कई सारे जो है बच्चे जो है पढ़ रहे होंगे फिजिक्स वाला से, उसकी एक स्टोरी है। एंड मेरा भाई जिसने खुद नीट की प्रिपरेशन उनकी वीडियोस देख के की है, हमारे लिए ये वीडियो जो है, ये जो सीरीज थी ये काफ़ी पर्सनल टच के साथ थी। सो एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ले लो, अगर आपको मोटिवेशनल चीज़ें देखने का काफ़ी शौक है सो ये सीरीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं। 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आपने अपने वीकेंड पे क्या किया ये आप मुझे बता सकते हैं। थोड़ी सी देर में ऑल ऑफ अपडेट्स के साथ हमारी मुलाकात होने वाली है, सो स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Radio

0: जी और अलका याग्निक जी की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यार देखो, लाइफ मस्त तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों की है, क्योंकि बच्चे जो है जो कहते हैं जो करते हैं उन्हें करने दिया जाता है। एंड स्पेशली मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जिनके वर्ड्स जो है वो आधे अधूरे निकलते हैं मुंह से, कचट प लप लप ऐसे जो बात करते हैं ना बच्चे, एक तो सबसे पहले वो बहुत क्यूट लगते हैं, एंड वो जब आपको जो उठा के मार दे, आपको कुछ भी बोल दे, आपके मुंह पे जो है चाटा मार दे, वो आपको काट लें, कोई कुछ नहीं बोलता उनको, वो हर चीज करते हुए क्यूट ही लगते हैं। एंड कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन इतने क्यूट दिखते हैं कि आप गुस्सा कर नहीं सकते इन बच्चों पे। सो एक ऐसे ही बच्चे की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जहां पे वो केचप को केचप ऐसा कुछ बोल रहा था, एंड उसके बाद केचप का एक ब्रांड था, उसने लिटरली उस केचप की बॉटल को केचप लिखकर जो है पूरी ब्रांडिंग के साथ उनको भेजा कि ये लो, आपके बच्चा जो है हमारे केचप को केचप बोलता है तो उसके लिए केचप ही ले लो। सो ऐसे बहुत सारे यू नो क्यूट वर्ड्स हैं जो अगर आप किसी बच्चे के साथ रहते हो तो आप भी उसको वैसे ही प्रोनाउंस करने लग जाते हो। जैसे मैं जो है एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ, वो पॉडकास्ट करते हैं अपने छोटू से बेबी के साथ, एंड उनका जो बेबी है उसको एनिमल बोलना नहीं आता है तो वो एमिनल बोलता है। सो अब वो लोग हर कॉन्वर्सेशन में एनिमल को एमिनल ही बोलते हैं, चॉकलेट को सॉकलेट बोलते हैं, पियानो को प्लानो बोलते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई घर पे बच्चा होता है तो आप भी खाने की चीज़ों को या किसी भी चीज़ को किसी और नाम से बुलाने लग जाते हो या उसका प्रोनंसिएशन बदल देते हो? जैसे कई बार होता है ना कि चावल को हप्पा बोलने लग जाते हैं, पानी को मम्मम बोलने लग जाते हैं। सो क्या बच्चों से आप सीखते हो, मतलब बच्चों को खुद सिखाने के बजाय क्या आप बच्चों से कुछ सीखते हो? 3311063 पर मैसेज करके मुझे बता दो, मैं भी कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें जो मैंने अपने कजिन से सीखी हैं वो आपको बताऊंगी। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। और जो है ये गाना जो है बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज ये मेरे वाइब वाला गाना है यार, कभी कभी लगता है कि खुद को यही गाना डेडिकेट कर दूं। सो एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

ये एक ऐसा गाना है ना कि जिसपे आप डांस करने से खुद को रोक ही नहीं सकते, मतलब रोक ही नहीं सकते। और अगर आपने रोक लिया, अगर आपने रोक लिया तो आपने रोक लिया, मतलब आप में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, हम बात कर रहे थे कि एक केचप ब्रांड ने एक बच्चे के मिस प्रोनाउंस करने पे, मतलब एक जो बच्चा था वो केचप को कैप्चप बोलता था, सो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग में ही केचप को कैप्चप लिख के उस बच्चे को गिफ्ट किया, उसकी फैमिली को गिफ्ट किया कि ओके दिस इज क्यूट। सो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को सिखाने के बजाय बच्चों से सीख जाते हैं। सो वो मैंने आपसे पूछा था, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और एड्रेस करना चाहती हूँ कि इसके साथ साथ जितनी न्यू मॉम्स होती है ना, वो सब बच्चों के अराउंड अलग टाइप की लैंग्वेज में बात करने लग जाती है। बेटा स्टिच करो, बेटा हेलो बोलो, बेटा बेटा ईच करो, बेटा डांस करके दिखाओ। ये मम्मियों का एक्सेंट कैसे बदल जाता है। नो बेटा हम स्वीट नहीं खाते, नो बेटा इट्स नॉट गुड। क्या हो रहा है ये मम्मियों को, या अचानक से कैसे ट्रेनिंग मिल जाती है। मेरी कुछ कजन्स थी जिन्होंने ऐसा कहा था कि हम तो देखो बहुत कूल मॉम बनेंगे, हम जो है ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और पता नहीं कैसे अचानक से उनमें भी यही वाली शक्तियां ऑटोमेटिकली आ गई है। वो भी ऐसी ही बात करती है अपने बच्चों से, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये जो है बेसिक तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, लेकिन ये कई बार जो है हम जैसे लोगों को बहुत फनी लगता है। सो देखिए 3311063 ये जो है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर मैसेज करके आप अभी भी बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने अपने बच्चों से सीखी हैं, मतलब अगर प्रोनंसिएशन की हम बात करें तो, कि ऐसी कौन सी उनकी आदतें हैं जिन्हें आपने लगा लिया। जैसे कुछ सॉफ्ट टॉयज का भी नाम होता है ना, जैसे टेडी बियर जो है उसको जो है कुछ टुक टुक नाम दे दिया, टिम टिम नाम रख दिया, टॉमी नाम रख दिया। सो ऐसे सॉफ्ट टॉयज के नाम या किसी चीज को अगर कुछ नाम दिया हो सो वो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ।

इनकी तरह अगर आपका सैयां भी आपसे बोल नहीं रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम अब मुझे समझ आ चुकी है। मैं भी नहीं बात कर पा रही हूँ, क्या हुआ है बताती हूँ आपको। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड अभी अभी आपकी प्यारी, यू नो वो 100 किलो प्यार वाली जो सिमरन है, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा एंड उसका रिप्लाई करने के लिए मैं अपने फोन में व्हाट्सएप पे जो है अच्छा सा GIF ढूंढ रही थी उन्हें भेजने के लिए, आंखों में आंसू वाला या क्यूट सा कुछ भी। एंड वो ढूंढते ढूंढते इतनी देर हो गई कि उनका ऑडियो नोट आ गया। So, अब इससे मुझे एक बात ये रियलाइज हुई है कि जब आप ये सोचते हो कि सामने वाला आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, आपका मैसेज देख चुका है, तो एक्चुअल में वो जो है ऐसा नहीं कि वो आपको रिप्लाई नहीं करना चाहता है, वो एक अप्रोप्रिएट GIF ढूंढ रहा है आपको भेजने के लिए। हाँ, आपको भेजने के लिए सही इमोजी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए देखो लड़कों तुम्हारी साइड ले ली है मैंने। एक अच्छा बहाना दे दिया है अब बनाने के लिए। सो 4-5 सेकेंड में कोई अच्छा सा जो है एक GIF भेज दीजिएगा। मैं भी जरा सिमरन को वो GIF भेज के आती हूँ, तब तक आप राधा लम्बिया गाना जो है वो इंजॉय करो। अगर आपसे फैशन की बातें जो है वो मुझे करनी है, स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
2: रेडियो ऑलिव पर
3: song of the hour.
4: Yeah, guys.

दिए जलाते जलाते महंगी महंगी कैंडल्स जो है जलाने पर हम कैसे आ गए, कब आ गए पता ही नहीं चला। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। कल आप बिलीव नहीं करोगे इतने की मैं ग्रोसरी नहीं लेके आई हूँ जितने की मैं सिर्फ 3 कैंडल्स लेकर आ गई हूँ, और वो कैंडल मैं जलाऊंगी भी नहीं क्योंकि वो इतनी प्रिटी दिखती हैं कि वो खराब हो जाएंगी अगर मैंने उन्हें जला दिया तो। एंड एक तो मेरे पास अच्छे से कैंडल्स को जलाने वाला लाइटर भी नहीं है तो

अभी मैंने ऑलरेडी ये सोच के रखा है कि अगला खर्चा मुझे किस चीज पर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी वर्थ जगह पर जो है आपका खर्चा हो, तो एक ब्रेन रॉट कॉमेडी जो अभी रिलीज हुई है वो आप देख सकते हैं। धमाल 4 का सेकेंड हैंड रिव्यू जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आपको पता है मैं मूवीज देखती नहीं हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे लोग जिन्होंने मूवी देखी है वो क्या क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ। सो प्लॉट वही है, एक क्योटिक सा ट्रेजर हंट जो है वो इस मूवी में चल रहा है। गाने जो है वो बहुत अच्छे है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, एंड ऑल इन ऑल एक फन चीज है। मतलब अगर आप दिमाग घर पे छोड़कर जाओगे तो फिर अच्छी ही लगेगी। सो आपको ये मूवी कैसी लगी 3311063 पर आगे आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरे ऑफिस में अगर कोई देख कर आएगा तो जो है मैं आपको एक बार बता दूंगी उन्हें कैसी लगी। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए कॉकटेल 2 से और आपकी कशिश के साथ। कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हम सफर और इतना रोमांटिक गाना, आय हाय इतना रोमांटिक गाना कि मैं क्या बोलूं। जब ये मूवी आई थी, जब ये गाना रिलीज हुआ था ना, तब अचानक से अखिल सचदेवा के फॉलोअर्स एकदम स्पाइक हो गए थे एंड लोग जो है रोमांस का दूसरा नाम इन्हें कहने लग गए थे। फिर अरिजीत सिंह ने एक और एक दो गाने और निकाले एंड उसके बाद हो गया। वैसे देखिए, आज मैं आपको ये बताने के लिए आ गई हूँ कि अगर आपको कोई मूवी जो है अगर देखनी है, सो वो आप कौन सी मूवी है जो इन्जॉय कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी अभी OTT में न्यू रिलीज हुई हैं एंड अभी करेंटली अगर मैं बात करूँ सो बहुत सारी मूवीज़ जो है वो थिएटर्स में भी लगी हुई हैं। जैसे मैंने अभी धमाल 4 के बारे में आपको बताया एंड उससे पहले भी बहुत सारी अमेजिंग मूवीज़ जो है वो आई हुई है। लेकिन अब बात यह है कि यार कौन सी मूवी है ऐसी जो देखी जाए। सो मैंने जैसे बताया था कि हेलो बच्चों मैंने एक सीरीज देखी आज, यू नो कल बैठ कर पूरी बिंज वॉच करी एंड वो बहुत ही अमेजिंग लगी। एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल पे आपको ये मूवी टच करती है एंड एक स्टोरी में ही आपको 5-6 स्टोरीज अलग अलग लोगों की, अलग अलग जॉनर की देखने को मिल जाएंगी, जहां पर एक ना एक से तो आप रिलेट करोगे ही करोगे। सो हेलो बच्चों को मैं देना चाहूंगी 4.5 स्टार्स 5 में से एक बार जरूर से देख लेना। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट पर, इसे इंजॉय कीजिए। आकर जरा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो आपसे करनी है। स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

देखो हमारे जो देसी हाउस होल्ड वाले लोग है ना, ये जाने जाते हैं, माने जाते हैं मेहमानों की यू नो आओ भगत करने में, उन्हें अच्छा फील कराने में। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड टॉम हॉलैंड AKA स्पाइडरमैन जो है वो इस वक्त इंडिया में घूम रहे हैं, उनके स्वागत में लोगों ने पोस्टर क्या क्या नहीं बनाए, क्या कुछ नहीं किया। आखिरी बार जब इंडिया से वालों से इंटरेक्शन हुआ था ना टॉम हॉलैंड का, तो उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से बुलाया जा रहा था, ओ टॉमी स्पाइडरमैन। इस बार लेकिन बहुत अच्छा वाला स्वागत हुआ है, मूवी भी देखी उन्होंने बैठकर इंडिया के काफी सारे लोगों के साथ, तो मुझे तो देखो अच्छा लग रहा है। इंस्टाग्राम इस वक्त पूरा भरा हुआ है सिर्फ टॉम हॉलैंड के स्वागत से। आप बताइए मुझे, अगर आपको स्वागत करना होता स्पाइडरमैन का तो किस तरीके से करते। मैं हूं आपकी कशिश, एक अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए। मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

से टाटा बाय बाय कह के आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो मैं चलती हूँ, कल वापस आ जाऊंगी यार। लेकिन अब देखिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा क्योंकि गर्मी बहुत है ना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। एंड देखो सनस्क्रीन लगाए बिना तो बिल्कुल बाहर मत जाना, मैं नहीं चाहती कि आप टैन हो जाओ, एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो होती है ना यूवी रेज से। सो सनस्क्रीन लगाते रहना, बाकी मुझे याद करते रहना 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। इस पर अगर आप मुझे बता सकते हैं कि यार आपको मेरा शो कैसा लगता है, कोई फीडबैक हो या कुछ ऐसी चीज हो जो आप चाहते हैं जिसपे मैं बात करूं, सो वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, फिर बैक टू बैक म्यूजिक एंजॉय करते रहिए और रेडियो ऑलिव के साथ आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास तारा, बाय बाय, टेक केयर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

हाय, गुड आफ्टरनून. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं आपसे बस यही कहूंगी नमस्ते और एक ब्यूटीफुल सैटरडे आफ्टरनून में आपका स्वागत है. मैं हूं मुस्कान और आप सुन रहे हैं ऑलिव रिचार्ज, जहां अगले 3 घंटे हम आपके वीकेंड को और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग बनाने वाले हैं. वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि सैटरडे का अपना ही अलग एटीट्यूड होता है? ना मंडे वाली टेंशन, ना संडे वाला वो मीटिंग्स का स्केड्यूल, ना थर्सडे वाला काउंटडाउन, बस एक सुकून. यू नो, कहीं फैमिली ब्रंच चल रहा होगा तो कहीं पर यू नो, दोस्तों के साथ कॉफी पीने का आपका प्लान बन रहा होगा तो कहीं पर लोग अभी भी ब्लैंकेट के अंदर ये सोच रहे होंगे कि यार बस थोड़ी देर और एक मूवी और खत्म कर लेती हूँ. बाय द वे, मैंने भी एक जस्ट मूवी खत्म की है और उसके बाद यू नो आई केम हेयर कि यार अब चलते हैं रिफ्रेश होके. नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही अच्छी मूवी रिलीज हुई है सनी देओल की, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने. सो वीकेंड की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये हमें ना याद दिलाती है कि लाइफ ना सिर्फ डेडलाइंस और मीटिंग्स का नाम तो होती नहीं है. कभी कभी एक स्लो आफ्टरनून, एक अच्छी प्लेलिस्ट और यू नो, अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त पूरे हफ्ते की थकान को मिटाने के लिए बहुत जरूरी होता है. तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं कतर की, वीकेंड के आइडियाज की, स्पोर्ट्स की, बुक्स की और थोड़ी सी जिंदगी की भी. तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से कि अगर आज पूरा दिन सिर्फ आपने अपने लिए रखा है तो सबसे पहले आप क्या करना प्रेफर करने वाले हो? कोई ड्राइव, कोई मूवी, या फिर ऑलरेडी आप लंच करके अब सोच रहे हैं कि चलो अब चलते हैं वापस घर की तरफ? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: is brought to you by.
1: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: सो बचपन की समर वेकेशंस आपको याद है? सुबह मम्मी की आवाज से उठना, दिन भर खेलना, शाम को मतलब घर वापस आना और फिर अगले दिन वही एक्साइटमेंट। आज का बचपन थोड़ा सा अलग हो गया है क्योंकि स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है, ग्राउंड्स थोड़े कम हो गए। शायद इसीलिए मुझे कदर की एक इनिशिएटिव जो है वो बहुत पसंद आता है, विच इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, जिन्होंने समर एक्टिविटी सेंटर जो है वो शुरू किए हैं, जहां 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, लर्निंग और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका किसी कंट्री का या किसी घर का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। और उनका स्लोगन भी बहुत ही खूबसूरत है, इन्वेस्ट देयर समर इन क्रिएटिविटी। अब कितनी सिंपल सी बात है ना, समर में सिर्फ टाइम पास नहीं, फ्यूचर बिल्ड करने का भी वक्त हो सकता है। सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब बच्चे नई एक्टिविटीज ट्राई करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नेचुरली जो है इम्प्रूव होता है। तो अगर घर में छोटे चैंपियंस हैं आपके, तो इस सैटरडे मतलब आज के दिन आप भी उनसे एक सवाल जरूर पूछे कि समर आप क्या नया सीखना चाहते हो। सकता है कि बच्चों के मन में कुछ हो और वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तो उनका जवाब आपको सरप्राइज कर दे। सो बच्चों से बात कीजिए, उनको और जानने की कोशिश कीजिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Cool song.

0: कर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive
4: Recharge. This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

सो अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? आज एक इंटरेस्टिंग थॉट शेयर करती हूँ. अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है या किसे कहते हैं, तो शायद हर इंसान का आंसर ना थोड़ा सा अलग होगा. कोई कहेगा कि यार अच्छी सैलरी होनी चाहिए, कोई कहेगा कि यार एक सेफेस्ट सिटी होनी चाहिए, कोई बोलेगा कि यार हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, और कोई सिर्फ इतना कहेगा कि जहाँ अपने लोग होते हैं बस वही बेस्ट है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. इसीलिए दुनिया भर में हर साल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ इनकम नहीं, सेफ्टी, हेल्थ केयर, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं. और मुझे लगता है कि ये हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है कि लाइफ की क्वालिटी सिर्फ बैंक बैलेंस से डिसाइड नहीं होती बॉस, बैलेंस इन लाइफ से होती है. अगर काम है तो वो भी ज़रूरी है, अगर हेल्थ है तो वो भी ज़रूरी है. तो प्रॉब्लम क्या है, पैसे नहीं है लेकिन टाइम नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम है. सो बेसिकली आई विल से कि आपके हिसाब से एक अच्छी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है, पीस, फैमिली, हेल्थ या फाइनेंशियल सिक्योरिटी. व्हाट्सएप करके बताओ मुझे 3311063 पर, और जरा लाइफ का डेफिनेशन सुनते हैं आप लोगों से भी. सो फटाफट से मैसेज कीजिए. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: एप्लीकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: So, एक बार एक टीचर ने क्लास में पूछा कि यार जो मछली है ये पानी के बाहर क्यों नहीं रह सकती। अब सबने जवाब दिया क्योंकि यू नो वो पानी में ही रहती है। अब टीचर मुस्कुराई और बोली बिल्कुल सही, लेकिन इंसान की प्रॉब्लम उल्टा है। यू नो हम इतनी देर तक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि धीरे धीरे यू नो सपने जो हैं वो छोटे होने लग जाते हैं। कंफर्ट जोन जो है वो बहुत ही बुरी आदत है, बुरी लत जिसे कहते हो आप। लेकिन अगर वही परमानेंट एड्रेस बन जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। कभी नया कोर्स करना, कभी नए लोगों से मिलना, कभी पब्लिक स्पीकिंग करना, कभी एक नई हॉबी अपनाना, ये नई चीज़ें शुरू में अनकम्फर्टेबल ज़रूर लगती हैं, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट कल का कॉन्फिडेंस बनकर निकलती हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, दिस इज़ मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज। सो वीकेंड शायद इसीलिए स्पेशल होता है क्योंकि ये हमें रूटीन से बाहर निकलने का चांस देता है। सो इस वीकेंड एक चैलेंज है आपके लिए कि एक काम ऐसा कीजिए जो आप काफ़ी टाइम से सिर्फ सोच रहे हो कि यार शुरू करना है, जैसे कि कोई यू नो जिमिंग, एक्सरसाइज, योगा, वट एवर यू लाइक। यू नो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है, फेलियर से, रिजेक्शन से, या बस पहले स्टेप लेने से? सो बताइएगा ज़रूर, नंबर इज सेम 3311063, एंड बताइएगा कि आपका सैटरडे कैसा जा रहा है। हो सकता है आपका जवाब किसी और को यू नो हिम्मत दे दे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: वेलकम बैक। कभी आपने सोचा था कि दुनिया का एक कंट्री जिसे हम कतर कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का घर बन जाएगा? सो पहले फीफा वर्ल्ड कप, फिर फॉर्मूला वन और अब पेडल वर्ल्ड कप। यस, और मुझे लगता है कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है, कतर ऑफिशियली फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 होस्ट कर रहा है। और सबसे खास बात पता है क्या है कि पहली बार होगा जब अरब कंट्री इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही है। सो नेक्स्ट मंथ 27th ऑफ अगस्त से 12th ऑफ सेप्टेम्बर 2027 तक दुनिया की बेस्ट बास्केटबॉल टीम्स जो है वो आपको कतर में नजर आएंगी। एंड ना, जब कतर में कुछ होता होता है तो सारे कैफेज बहुत हैपनिंग हो जाते हैं शाम को, मतलब हर कोई आपको बाहर दिखने लग जाता है। सो मुझे लगता है कि इस न्यूज का मतलब सिर्फ बास्केटबॉल नहीं है, ये ट्रस्ट की कहानी है। जब दुनिया बार बार किसी कंट्री को इतने बड़े इवेंट्स देती है तो इसका मतलब होता है कि उस कंट्री ने ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी पहचान जो है वो तो बना ली है। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मुस्कान है आपके साथ। और हर कतर में रहने वाले के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला है। अगर कतर एक और ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट करे तो आप क्या देखना चाहोगे? ओलंपिक्स, क्रिकेट या फिर कुछ और? बताइएगा मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: सो कातर की समर का एक रूल तो आप सबको पता है कि 12 बजे के बाद बाहर निकलो और 2 मिनट में समझ आ जाता है कि एसी किसने इन्वेंट किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीकेंड सिर्फ घर के सोफे पर गुजारने के लिए है या फिर सिर्फ मॉल जाने के लिए है। बस प्लान्स थोड़े से स्मार्ट होने चाहिए अगर फैमिली के साथ आउटिंग का मूड आपका बन रहा है तो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑल ओवर रिचार्ज। सो आप म्यूजियम ऑफ इल्यूजन एक ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए बच्चों के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, या अगर मुझे लगता है बड़े होके भी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हो, और मैंने तो इस उम्र में देखा है। और इसी के साथ अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि फ़ोटो कैसे ली जाए वहाँ पर, अगर कतर को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर एक ब्यूटीफुल जर्नी है। हिस्ट्री, कल्चर, फ्यूचर सब एक ही जगह पर मिल जाता है। और अगर आपके बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, उनको आप यू नो उसमें मोटिवेट करना चाहते हो, तो भाई 3-2-1 कतर जो है ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट म्यूजियम वो तो फिर है ही। सो बैडमिंटन, पेडल, बोलिंग, इंडोर स्पोर्ट्स का प्लान अगर बन रहा है तो बहुत ही परफेक्ट प्लान है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे कि इंडोर में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, गर्मी भी अवॉइड हो जाएगी और वीकेंड भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो कभी कभी आउटिंग का मतलब ना सिर्फ मॉल जाना नहीं होता, बस रूटीन से बाहर निकलना होता है। सो अगर आज सिर्फ एक जगह आप जाना चाहें, म्यूजियम, बोलिंग या फिर कोई पेडल कोर्ट या फिर कॉफी शॉप, तो आप क्या चूज करने वाले हो? सो 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

रखती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Olive laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

सो हर दिन परफेक्ट नहीं होता और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है. आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक की बात करते हैं, द कम्फर्ट बुक बाय मैट हेग. सो बेसिकली ये कोई किताब, ऐसी किताब नहीं है जिसमें कोई हीरो है या छोटे छोटे थॉट्स का कोई कलेक्शन है जो आपको लाइफ को ना थोड़ा सा और हल्का देखने में सिखाती है. इस बुक की एक लाइन जो है मुझे बहुत पसंद है, जो है यू डोंट हैव टू सॉल्व योर होल लाइफ टुडे. ठीक है, मतलब एक ही दिन नहीं है आपके पास. सोचिए हम कितनी बार फ्यूचर की टेंशन में आज का दिन खराब कर देते हैं. करियर, सेविंग, फैमिली, हेल्थ, सब कुछ एक ही दिन परफेक्ट करना चाहते हैं. लेकिन लाइफ चेकलिस्ट नहीं होती, लाइफ चैप्टर में चलती है और हर चैप्टर का अपना एक अलग पेस होता है. शायद इसीलिए वीकेंड भी बहुत जरूरी है, थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा सांस लेने के लिए, थोड़ा खुद को पूछने के लिए कि मैं ठीक भी हूं कि नहीं. सो बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या आप बेटर फील नहीं कर रहे हो, तो भाई आराम लीजिए, थोड़ा सा सुकून से रहिए और बहुत अच्छा फील करेंगे आप. इसी के साथ मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आज सैटरडे है और मुझे बताइए कि आपके क्या प्लान्स चल रहे हैं. बाय द वे 3311 1063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tepkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas Olive Recharge।
1: This hour is brought to you by
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

सो हम ना अक्सर सोचते हैं कि अच्छी स्टोरी के लिए 3 घंटे की मूवी चाहिए, लेकिन कभी कभी सिर्फ 10 मिनट ही काफी होते हैं कुछ अच्छा देखने के लिए। अगर आज डिनर के बाद कुछ मीनिंगफुल देखना चाहते हो और कुछ ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म्स मैं आपको बताने वाली हूँ, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आती है द प्रेजेंट, सिर्फ 11 मिनट की है लेकिन एंडिंग ऐसी जो शायद आपको कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप कर दे। फिर आती हैप्पीनेस, एक 4 मिनट की एनिमेटेड फिल्म बिना डायलॉग्स के, लेकिन इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग कि लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ती और आपको समझ में आ जाता है कि इसीलिए कहते हैं कि वर्ड्स हर जगह जरूरी नहीं होते। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है हाउसकीपिंग, एक शॉर्ट ड्रामा थ्रिलर जो प्रूव करता है कि सस्पेंस बनाने के लिए 2 घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी स्टोरी चाहिए। वैसे मुझे ना शॉर्ट फिल्म्स इसीलिए पसंद है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि इम्पैक्ट लेंथ से नहीं स्टोरी से आता है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑल एवरी चार्ज। तो अगर आज आपका मन करे चलते फिरते यू नो डिनर के टाइम पे कुछ अच्छा देखने का, तो शॉर्ट फिल्म में से आप इनमें से कुछ भी एक पिक कर सकते हो। ये बिल्कुल कॉन्वर्सेशन की तरह है, कभी एक लाइन भी पूरा जो दिन है वो बदल देती है। सो आप मूवी पर्सन है या फिर शॉर्ट फिल्म भी उतनी ही आपको पसंद आती है। बाय द वे मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर इक्का देखी है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग के साथ आपको दिया मिर्जा और सनी देओल दिख जाएंगे और इतने शांत मूवी है और बाद में जो ट्विस्ट आता है ना, आई रियली लाइक्ड इट। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

सो कभी कभी एक छोटी सी यू नो कन्वीनियंस ना बड़ा डिफरेंस बना देती है. एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस किया आपने, हम अक्सर बड़े चेंजेस की बात करते हैं लेकिन लाइफ को ईजी बनाने के लिए चेंजेस ना अक्सर छोटे छोटे होते हैं. जैसे कि कतर की गर्मी, अगर सिर्फ पार्किंग थोड़ी पास मिल जाए तो गर्मी आधी कम लगने लगती है. इसी सोच के साथ मीना डिस्ट्रिक्ट में 15th ऑफ जून यानी कि लास्ट मंथ के 15th से 15th अक्टूबर तक, जब पता है कि गर्मी अक्टूबर में रहती है मतलब मिड तक, उसके बाद तो धीरे धीरे फिर अच्छा मौसम हो जाता है, तब तक गाड़ियों को रोड एक्सेस जो है वो दिया गया है ताकि विजिटर्स रिटेल शॉप्स और रेस्टोरेंट के पास पार्किंग कर सकें और लंबी वॉकिंग से बच सकें, सो दैट यू नो वहां पे जितने कैफेज हैं वो सब एक्टिव रहे. सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज. कतर जैसे वेदर में ये सिर्फ ना मुझे लगता है कि सुविधा नहीं है, ये मतलब एक अलग ही लेवल का कंफर्ट है. कभी कभी स्मार्ट प्लानिंग ही बेस्ट हॉस्पिटैलिटी बन जाती है. इसीलिए अगर इस वीकेंड मीना डिस्ट्रिक्ट का प्लान बन रहा है आपका, आपका जो सैटरडे थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको लगता है कि यार शाम को चलते हैं मीना डिस्ट्रिक्ट, सो यू नो ये आपके लिए अच्छी आउटिंग और आसान आउटिंग हो जाएगी. वैसे मुझे स्पेशली मीना डिस्ट्रिक्ट की एक बात बहुत पसंद है, मतलब क्या तो हवा आती है शाम को वहां पे, कलरफुल बिल्डिंग्स देख के ऐसे रिलैक्स फील होता है ना, मुझे लगता है कि यार इससे खूबसूरत क्या हो सकता है. कतर में आपकी वीकेंड वॉकिंग जो है, मतलब वीकेंड पे जहां आप वॉक करना पसंद करते हैं वो कौन सी जगह है? सूक वाकिफ, मीना डिस्ट्रिक्ट या फिर पर्ल या फिर ओल्ड दोहा पोर्ट, बताना मुझे. नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हर दिन ना आप सोशल मीडिया पे नए ट्रेंड्स देखते हो और उसमें से एक ट्रेंड मैं लेकर आई हूँ, विच इज माइक्रो वेकेशन। मतलब ना पासपोर्ट चाहिए, ना एयरपोर्ट जाना है, किसी छुट्टी की भी जरूरत नहीं है, बस 2-3 घंटे सिर्फ अपने लिए निकालने हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज। अब कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है यार, एक नया कैफे, बीच पर सनसेट, म्यूजियम की विजिट, फेवरेट किताब पढ़ना या कोई अच्छी मूवी देख लेना यार घर पे बैठ के, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि छोटे ब्रेक्स भी स्ट्रेस को रीसेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाय द वे, जब 2 बजे मैं ऑल ओवर रिचार्ज के लिए आ रही थी, उससे पहले मैंने सुबह एक बढ़िया मूवी देख ली है, तो मेरा तो आज का सैटरडे हो गया है फुल। सो शाम को आई विल गो विद माय फ्रेंड्स और मैं एक अच्छी जगह पर शाम बिताने वाली हूँ। सो लंबी छुट्टी मिलेगी तब रिलैक्स करेंगे ये मत सोचिए, लेकिन जिंदगी हर बार एक हफ्ते की हॉलीडे नहीं देती। कभी ना 2 घंटे मिलते हैं, कभी उन्हें जीना सीखिए, कभी शाम का टाइम मिल जाता है, कभी दोस्तों के साथ कुछ चाय पीने का टाइम मिल जाता है। सो इस वीकेंड एक माइक्रो वेकेशन जरूर प्लान करिए। और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि अगर आपको सिर्फ 3 घंटे की मिनी हॉलीडे मिले तो कतर में आप कहाँ जाना पसंद करोगे? किसी बीच पे, किसी कॉफी शॉप पे, या बस एक लॉन्ग ड्राइव पे, ग्रॉसरी खरीदने के लिए? अक्सर ये हम करते हैं ना वीकेंड्स पे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है रेडियो पर ऑलिव रिचार्ज। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive
1: Recharge. This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

सो आई हैव वन ऑनेस्ट क्वेश्चन विद यू. आपने ना आज सुबह उठकर सबसे पहले क्या देखा था, विंडो से बाहर का वेदर या फोन की स्क्रीन? हम सब बोलते हैं यार बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, और पता नहीं कब ये 20 मिनट निकल जाते हैं बेड पे ही फोन चलाते चलाते. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया खराब है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वीकेंड का मतलब ना सिर्फ ऑनलाइन रहना तो बिल्कुल नहीं है. सोचिए अगर आज शाम 1 घंटे के लिए फोन साइलेंट कर दीजिए, तो शायद हम ना ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा हंसेंगे और आसपास की चीजों को ज्यादा नोटिस करेंगे. कभी कभी रियल लाइफ की जो स्टोरीज होती है ना वो रील से ज्यादा खूबसूरत होती है. सो आई हैव अ चैलेंज फॉर यू. अब आज जो शाम का टाइम है, चाहे आप कॉफी के लिए दोस्तों के साथ जा रहे हो या फिर यू नो समथिंग फॉर ग्रोसरी और व्हाटएवर, सो उस टाइम पर फोन टेबल से मतलब हटा देना, मतलब बिल्कुल भी ध्यान मत देना और सिर्फ कॉन्वर्सेशन या फिर चीजों को एंजॉय करना. फिर देखना कि लाइफ ना कितनी डिफरेंट लगेगी. ऐसा लगेगा टाइम ना बहुत स्लो हो गया है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. सो आप मुझे बताइए, क्या आप 1 घंटे बिना सोशल मीडिया के रह सकते हो? सो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्टेड है तो फटाफट से मुझे मैसेज कर दो ऐसे डन लिख के ना 3311063 पर. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: सो वीकेंड का जो सबसे अच्छा सुवेनियर होता है वो क्या होता है? सो आज के ऑलिव रिचार्ज का जो सफर है यहीं तक था, और मुझे ऐसा लगता है जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे आपसे करनी चाहिए। हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो वापस आते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहे उस जगह का, कभी मैग्नेट, कभी की चेन, कभी शॉपिंग बैग्स। लेकिन जिंदगी का बेस्ट सुवेनियर पता है क्या है? जो कभी खरीदा नहीं जाता, वो मतलब बनाया जाता है, जैसे कि एक फैमिली लंच, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, एक अनएक्सपेक्टेड हंसी, या फिर कोई सनसेट, या एक यू नो एक कप चाय के साथ गुजरा हुआ वक्त। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज। सो सिर्फ फोटो कलेक्ट मत कीजिए हर जगह जाकर ना, बस वहां पर फोटो कलेक्ट करते हो और फिर आपको लगता है चलो चलो हो गया काम। सो मोमेंट्स को कलेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आज सैटरडे को आप ये स्टोरीज बना सकते हो, ये कहानियां बातें कर सकते हो, और कल से फिर वही ऑफिस जाना है, खूब सारी मीटिंग्स होंगी, लेकिन वीकेंड की यादें बहुत देर तक साथ रहती हैं। सो आई विल से कि इसे एंजॉय कीजिए। अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, और इस गर्मी में थोड़ा सा स्लो डाउन भी करिए। सो जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करने से पहले कभी कभी थोड़ा सा पॉज लेना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव। फॉर नाउ बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

अभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

चीजें बता दीजिए, लेकिन उससे पहले वीकेंड के बारे में तो पूछ लूंगी, लेकिन आपका आज का दिन कैसा रहा वो जरूर बताइएगा 3311063 पर। अब सिमरन कौर आ चुकी है तो पता ही आपको, चार घंटे अपने ही है, बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना, जहां जाना है जाओ, लेकिन रेडियो आपके साथ साथ रहना चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी में, चाहे आपके घर में जो रेडियो है वो, या फिर आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अटेंशन पूरी चाहिए मुझे, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कौर के जरिए। जी ओ विद अस।

0: वीकेंड कैसा रहा वो बता दूं यार। नींद भी पूरी की, तो ये दोनों चीजें जो है वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थर्सडे नाइट जो था वो बाहर गए, डिनर किया, मैच देखा। अब तो आपको पता है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप का जो फीवर है हर जगह पे है, आप कहीं पे भी चले जाइए मैच है, स्कोर है, मजा आ जाता है। सो या मैच भी देखा, बड़ा मजा भी किया, और अगले दिन फ्राइडे को रेस्ट भी की, अपना मन पसंद वाला जो है वो खाया भी। आजकल पता क्या हो रहा है, पता नहीं है मेरे साथ क्यों हो रहा है यार, बड़ी भूख लग रही है, मैं खा रही हूँ, खाने के बारे में ही सोच रही हूँ। सो पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैं ऐसी दीदी से पूछ रही थी, तो कभी कभी मेरी दीदी बोलती है कि ऐसे भी होता है कि कभी कभी आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। नॉर्मल होता है जब आपको नॉर्मल भूख लगती है, तो एबनॉर्मल सीन चल रहा है मेरा, मेरे को आजकल बड़ी भूख लग रही है और मैं कुछ भी दिखता है मैं खा जाती हूँ यार, तो मुझे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी फिलहाल आज कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मैच के बारे में बात करेंगे वापस लौट के। सुंदरिया रेडियो ऑलिव कर कहते रहिए जी ओ बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ऑल राइट, मैच के बारे में बात करते हैं। कल हफ्ते का पहला दिन है और आज फुटबॉल लवर का प्यार जो है वो देखा जाएगा। आज रात और एकदम अर्ली मॉर्निंग जो है वो आप लोगों का प्यार टेस्ट होने वाला है। रात को 12 बजे आज मैच है नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में, और उसके बाद सुबह 4 बजे अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में मैच होने वाला है। ओ माय गॉड, तो आप में से कितने लोग हैं जो कि दोनों मैच देखने वाले हैं, या फिर एक मैच देखने वाले हैं रात के 12 बजे, या फिर आप कोई भी मैच नहीं देखने वाले क्योंकि सुबह ऑफिस है यार। 3311063 पर बता दीजिए आप मुझे।
1: ये खेल है, खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

इंस्टाग्राम का जो नया चेंज है ना, कलेश भी पढ़वा सकता है। आपके साथ मान लीजिए कि आपने कोई सैड स्टोरी डाल दी और आपके फ्रेंड ने देख ली, ओके, तो उसके बाद आपको लगा कि यार इसने मेरी स्टोरी देखी और इसने मेरा, मतलब मेरे को पूछा नहीं कि मैं सैड क्यों हूँ, तो आपने जब उससे पूछा तो उसने बोला नहीं नहीं यार तेरा फोन आया, मैंने अब भी जस्ट तेरी स्टोरी चेक की, बट वो झूठ नहीं बोल पाएगा, ना बोल पाएगी, क्योंकि अब आपको टाइम दिखता है कि किसी ने 4 मिनट पहले आपकी स्टोरी देखी, किसी ने 5 घंटे पहले आपकी स्टोरी देखी या रात को आपकी स्टोरी देखी। ये जो मिनट्स वाली स्टोरी वाला ऑप्शन आया भाई साहब, बहुत सारी कलेश जो है करवाएगा। और एक चीज मैंने और भी नोटिस की है, जब आप किसी को डीएम में रील भेजते हैं उसके ऊपर आप हार्ट क्लिक करते हो तो हार्ट अब दूसरे तरीके से उड़ के साइड में जाता है, वो अलग लेवल का एक सीन जो है वो चल रहा है। लेकिन एक सीन और चल रहा है इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में वापस लौट के बात करेंगे। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स

करके उन्हीं की रील में कमेंट किया तो रीच उनकी बढ़ रही है। भाई साहब आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ नाम यूज हुआ जा रहा है वहां पर, रीच उनकी बढ़ रही है, कमेंट उनके बढ़ रहे हैं, शेयर उनके हो रहे हैं। सुया ऐसे झंझट में ऐसे झोल में मत फंसिए, किसी के फॉलोअर्स इस तरह से नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो वो कर रहे हैं कॉपी पेस्ट वाला ट्रेंड आप लोगों के ऊपर छाप रहे हैं, उससे उनके फॉलोअर्स दिखाने के लिए आपको जरूर बढ़ रहे हैं। सोया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ओलिव नंबर वन।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के,

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: बिलीव नहीं करोगे जो मैं आज व्हाट द वायरल में आपको बताने वाली हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।

0: गाल सिमरन कौर थोड़े नाल सुबह तो वायरल में मैं आपको बता रही हूँ। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, सबको शौक होता है गर्मियों में, सो ज्यादा नहीं आपको पीनी चाहिए, लिमिट में जो चीजें हैं वो रखनी चाहिए। लेकिन अब लोग जो है वो इसको ट्राई कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में सॉल्टेड पीनट्स को डाल के कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है और कह रहे हैं कि भाई बड़ी स्वाद लग रही है। भाई वैसे हम पीनट्स अलग भी खा सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल के रोस्टेड पीनट्स को पी रहे हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्रेजी लग रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो इस ट्रेंड को ट्राई करना चाहेंगे या फिर बोलेंगे ये और ने बताइए 3311063 पर। जियो बिंदास, कुछ भी यार, कुछ भी करते हैं।
1: Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool song of the hour. Song of the
2: hour. क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: भाई दिन में बड़ी ज्यादा गर्मी थी यार आज। मौसम की बेशर्मी बढ़ती जा रही है यार। मुझे याद है कि दिन में जब मैंने कुछ 2 बजे के अराउंड टेम्परेचर देखा था 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन फील्स लाइक 49 डिग्री सेल्सियस था। और सोचिए 45 पे जब टेम्परेचर पहुंचा होगा तो सीधा 50 पे फील्स लाइक हो गया होगा। ह्यूमिडिटी 24% है, विंड जो है वो 22 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है और आज का मिनिमम टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। पानी पीते रहो दोस्तों और फ्रूट्स खाते रहो ऐसे जिसमें पानी है, जैसे कि वाटरमेलन बड़ा स्वाद लगता है यार, मस्क मेलन जो है वो भी बड़ा स्वाद लगता है यार, तो खाइए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

रूल्स रूल्स रूल्स रूल्स फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैफिक का रूल तोड़ेंगे और उसके ऊपर आपको फाइन आएगा तो आप बच जाएंगे, नहीं दोस्त नहीं। ये दर्द थोड़ा सा 50% कम तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। मैं क्या सोनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ, क्योंकि कैमराज है और ऊपर वाला सब देखता है, राइट। सो कदर में आपको बताएगी, जब आपको ट्रैफिक फाइन जो है वो देना पड़ता है, अगर आप एक महीने के अंदर अंदर भर देंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा माफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक साल ही निकाल दिया। सो अगर आपने इतना ऐसा कर दिया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, जो फिर आप कुछ भी होने से फिर नहीं, वो जो है वो वापस जाएगा। सो मेक श्योर कि आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, अगर आपने रूल तोड़ा है तो आपके ऊपर आया है फाइन, भर दीजिए, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो यार, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है। सिमरन गौरी आओगे साथ, जियो बिंदास।

0: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
2: Radio Olive, our number one.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: बहुत ही क्रेजी चीज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ यार। अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जाते हैं और वहां पर आप अकेले होते हैं, दोस्त भी नहीं अगर आपके होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो दोस्त आए, क्योंकि क्या होता है कि फैमिली से निकलने के बाद आपकी एक और फैमिली जो होती है वो होते हैं आपके दोस्त। तो मैं फिनलैंड के बारे में पढ़ रही थी। ये सब जगह नहीं है, लेकिन फिनलैंड के कुछ जो सुपर मार्केट्स हैं वहां पर जब आप ग्रोसरी करने जाते हो तो वहां पे बास्केट रहती है। एक बास्केट होती है पिंक कलर की, ये मेरे को कल ही पता लगा। हाँ, पिंक कलर की बास्केट अगर आप उठा के ग्रोसरी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो है वो सिंगल हैं और आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हो और उनके दोस्त बनना चाहते हो। बट इसका भी एक रूल है, आपसे कोई और रंग वाला जो बास्केट पकड़ा हुआ है वो बात नहीं कर सकता। अगर आपने भी पिंक बास्केट पकड़ी और सामने वाले ने भी पिंक बास्केट पकड़ी है तो आप उससे बात कर सकते हो, मतलब वो दोस्त बनाना चाहता है। क्या आप अगर फिनलैंड गए और आपको ये सुपरमार्केट मिली, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये क्या पिंक बास्केट उठाना चाहेंगे क्या? आप ये एक तरीका है, ये एक वे है, यू नो, दोस्त ढूंढने का एक अलग जगह पे। सो या काफी क्रेजी लगी मुझे ये बात, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि एक म्यूचुअल रूल जो है वो होता है वही जो मैंने आपको बताया कि हाँ भाई उसने भी पिंक पकड़ी होनी चाहिए। बट ये एवरीवेयर नहीं है, ये एक फन लाइट हार्टेड मार्केटिंग जो है वो मैच मेकिंग स्टंट जो है वो किया गया है जो कि सिलेक्टेड ग्रोसरी स्टोर्स पर है। बट लेकिन काफी क्रेजी है यार। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: आपका सर्कल जो है ना, आपको बड़े होते होते समझ लगता है कि बहुत मैटर करता है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी, शुरू से पेरेंट्स जो है वो हमको बताते हैं कि इस बच्चे के पास नहीं बैठना बेटा, वो वाली गंदी आदत है, ये है वो, ये हमको बचपन में सिखाई जाती है, लेकिन हम लोग जो है वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमारा जब अपना सर्कल बनता है तो बहुत डिपेंड करता है कि हमारा सर्कल वैसा हो जो ग्रोथ की बातें करे, जो आगे बढ़ने की बातें करे, है ना, जो जहां पर हम गलत है हमको समझाने की बात करे, है ना। सो ऐसे सर्कल में आपकी ग्रोथ जो है वो होती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे सर्कल में हो जो ना खुद आगे बढ़ रहे हैं, ना खुद उनके है, और आप कुछ गलत कर भी रहे हो तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। सो मेक श्योर कि आप जो भी सर्कल जो है वो चूज करें वो ऐसा स्ट्रांग हो कि आप भी आगे बढ़े करियर में, लाइफ में, आप भी लाइफ में फन जरूर करें लेकिन आगे भी बढ़े, और आपके दोस्त लोग जो हैं वो भी आपको मोटिवेट करें और आप भी उनको मोटिवेट करो। सो सोच समझ के, क्योंकि क्या होता है जैसे सर्कल में आप होते हो ना वैसे आप बन जाते हो। सो मेक श्योर कि आप जो है वो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी ध्यान दीजिए, फन भी नहीं रुकना चाहिए और आपकी ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए। सिमरन गौरी आपके साथ, चियो बिंदास। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही सीरियस हो जाओ यार, ये तो मैं खुद भी नहीं करती हूँ।

0: basically.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
0: इन एसोसिएशन विद.
1: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
1: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
0: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। इवनिंग्स में टाइम हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा नजदीक आता जा रहा है कि सिमरन कौर के कल्टी माने का टाइम जो है वो आने वाला है, लेकिन मैच का टाइम जो है वो उतना ही नजदीक आते जा रहा है। नॉर्वे इंग्लैंड का मैच रात के 12 बजे होने वाला है, अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड का सुबह के 4 बजे होने वाला है। सबके अपने अपने प्लान है, लेकिन मैच के बीच में ये भी रोना होता है कि यार अगले दिन ऑफिस भी जाना है, बट दैट्स ओके यार, कोई बात नहीं। ये दिन जो है वो बार बार तो नहीं आएंगे। देखो मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मेरा खुद का पता नहीं है मुझे कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट दैट्स ओके। मेरे लिए थोड़ा सा ये चल जाता है क्योंकि मेरा ऑफिस थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि मेरा इवनिंग शो होता है ना, तो आप लोगों का पता नहीं है कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। अभी फिलहाल आपके साथ क्या होने वाला है ये भी डिसाइड आप ही करेंगे। मैं बात कर रही हूँ आजकल जो स्कैम हो रहे हैं, यू नो कि इस लिंक पे क्लिक करो या फिर आप अपनी डिटेल्स दो, आपको कॉल्स आ रही है या वीडियो कॉल्स आ रही है, सीआईडी की वीडियो कॉल्स आ जाती हैं कि भाई कोई भी सीआईडी आपको इस तरह से वीडियो कॉल नहीं करता कि आप अपनी क्यूआईडी दिखाइए, दिस एंड दैट। सो आप लोगों को अवेयर करना हमारा फर्ज है, हर बार बताना हमारा जो है वो फर्ज है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी किसी भी चीज पे भरोसा मत करिए, और कोई भी एवं जो लिंक होते हैं किसी वेबसाइट पे जाके एवं कोई लिंक जो है वो क्लिक मत करिए। किसी भी चीज के ऊपर फूक फूक के कदम रखिएगा। बोलते हैं कि मैसेज आ जाता है कि आपका ये पार्सल जो है यहां पर है, क्लिक करिए, आपका पार्सल एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। क्यों भाई, जब आपने पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं तो पार्सल आगे से जाएगा यार, थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: Hi Radio Olive, 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm a number one.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: दोस्तों तैयार हो जाइए नेम गेम के लिए। फटाफट से सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलूंगी। इम्तियाज, अब्रार, नजीमुल्ला आने स्टार्ट हो गए। रवि जी थैंक यू सो मच, फैजल जी, मलिक जी थैंक यू सो मच, मोनिका जी थैंक यू सो मच, वसीफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैस्मिन जी थैंक यू सो मच, जुबैर जी थैंक यू सो मच, आमिर जी थैंक यू सो मच, जुला जी थैंक यू सो मच, दुर्बा जी थैंक यू सो मच, अंबर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कृति जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार ये वॉइस नोट कौन भेज रहा है दोस्त? वॉइस नोट नहीं भेजो, मैं कैसे बोलते बोलते सुनूं, रोक दूं क्या सब कुछ मैं? किसी ने हे लिख के भेज दिया, हे का क्या होता है, आपका नाम हे है क्या? नईम जी थैंक यू सो मच, अनेज जी थैंक यू सो मच, पटेल साहब थैंक यू सो मच, पाली जी थैंक यू सो मच, सादिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, उर्बा आई गेस नाम मैं सही बोल रही हूँ, उर्वा जी थैंक यू सो मच, टीना जी थैंक यू सो मच, संजीदा जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन के लोगों के मेरे नाम ले लिए अब आप थैंक यू बोलो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दो। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कॉल, कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: वाओ, इसके बारे में तो पता ही नहीं था मुझे।
1: Gen Z decoded.
2: ऐसे है क्या?
1: दा दा दा दा।
0: चको मेरा सिमरन कौर आपके साथ। LOL तो मैंने सुना था, लाफ आउट लाउड, लेकिन आज मैंने एक और वर्ड जो है वो सुना है, वो है ईशबोल। जी हाँ, IJBOL, ईशबोल जो है वो एक्चुअली उसके लिए यूज किया जाता है, लाइक आई जस्ट बस्ट आउट लाफिंग, लाइक बहुत जोर जोर से हंसना। सो ये जो ईशबोल है इसको रिप्लेस LOL के साथ बाद में कर दिया गया था, या फिर LMAO के साथ कर दिया गया था। बट ये ईशबोल जो है वो बोलने में ऐसा लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है आई जस्ट बस्ट आउट लाफिंग। सो यार, Gen Z डिकोडेड में इस स्लैंग को हमने कर दिया है डिकोड। सुनते रहिए रेडियो ओलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव
1: जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन एमो।

0: सुरक्षा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर
3: दिल

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

बजकर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

106.3 FM, Gio Bendaz.